अध्यात्म ज्योति, अध्यात्म ज्योति।

एफएम अध्यात्म ज्योति को प्रस्तुति कार्यक्रम भजन सुमिरन। प्रत्येक शनिश्चरबार बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म अवश्य सुन्नुहोला केवल एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz। अध्यात्म ज्योतिको यो प्रस्तुतिका प्रायोजक शुद्धताको सुनौलो परम्परा जय माता दी गोल्ड प्यालेस शुक्रपथ न्यू रोड। प्रत्येक आइतबार बिहान 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म यहाँहरूकै शुभ सन्देश शुभेच्छा र प्रेरक प्रसङ्गका साथमा कार्यक्रम शुभ प्रभात सुन्न सक्नुहुनेछ मात्र एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz। कार्यक्रम भजन दीपाञ्जली प्रत्येक सोमबार सुमधुर भजन का साथ में बिहान 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुनेछ केवल एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz में। यस कार्यक्रम का प्रायोजक उच्च स्तरीय प्रविधि द्वारा स्वदेशमै निर्मित चाँदी का हर एक प्रकार का सामग्री का लागि प्रसिद्ध सिल्वर स्टेट धर्मपथ न्यू रोड काठमाडौँ। कार्यक्रम भजनांजलि।

0: FM अध्यात्म ज्योति शांति रेडियो
1: भजन सुमिरन अध्यात्म ज्योति को यो प्रस्तुति का प्रायोजक शुद्धता को सुनौलो परंपरा जय माता दी गोल पैलेस शुक्रपथ न्यू रोड।

एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।

एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8

0: 470161
1: 9032 45 54
0: 9849528781
2: अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ।

सबका आदरणीय श्रोता, आज को निमित्त कार्यक्रम भजन सुमिरन को समय ये नई जय माता दी गोल पैलेस शुक्रपथ न्यू रोड को प्रायोजन में रहकर इस कार्यक्रम म सभ्यता तिवारी हमारा प्राविधिक सहयोगी एवं यतिजेलसम को हम प्रस्तुति सुनीदी हुने यहाँ धन्यवाद दीदी विदा माग्दु। अध्यात्म ज्योति को इस पछाड़ी को प्रस्तुति में प्रस्तुता युवेन्द्र को साथ में यहाँ रहने कार्यक्रम सुंदर रहने हवस्त नमस्कार।

0: জলজি জলজি।
1: আধ্যাত্ম জ্যোতি, আধ্যাত্ম জ্যোতি।

अध्यात्म ज्योति।

0: अध्यात्म ज्योतिको अबको प्रस्तुति कार्यक्रम ओशो प्रवचन ओशो सन्देश।
1: दुनिया में लोग दूसरों को दुखी देने देख के मजा लेते हैं, इसलिए मुनियों साधुओं तपस्वियों के पास दुष्ट प्रकृति के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। वो कहते हैं महाराज गजब कर रहे हैं, कांटों पे लेटे भीड़ लगा लेते, धूप में खड़े हैं, भयंकर गर्मी पड़ रही है और गुरुदेव आप धुनी रमाए बैठे, आग जला के ताप रहे हैं, गजब। ये जो लोग हैं इनको मनोविज्ञान में खास शब्द है, वो कहते हैं मैसोचिस्ट। ये पर दुखवादी है, ये दूसरा सतारा है अपने को, इसमें इनको मजा आता है। ये वैसे ही लोग हैं जैसे कोई आदमी अपने शरीर में घाव कर ले और छुरी से घाव को कुरेदता रहे और ये कहें वाह आप बड़ी महासाधना कर रहे हैं, आपका जुलूस निकालेंगे, शोभा यात्रा निकालेंगे, पर्युषण में आपने 10 दिन व्रत किए उपवास किए शोभा यात्रा निकालेंगे, भूखे रहे आप महीने भर बड़ा उपवास किया आप महातपस्वी। तुम दुख दो अपने को और दूसरे लोग तुम्हें आदर देते, जरूर इसमें कुछ राज है। जब वे तुम्हें आदर देते तुम अपने को और दुख देने को राजी हो जाते, क्योंकि अहंकार की तृप्ति होती और उनकी भी जरूर कोई तृप्ति हो रही। लोग जासूसी किताबें पढ़ते हैं, क्यों? लोग जाके हत्याओं की फिल्म देखते हैं, डकैतियों की फिल्म देखते हैं, क्यों? तुमने कभी पूछा रास्ते पे दो आदमी लड़ रहे हों तत्काल भीड़ खड़ी हो जाती, तुम्हारी मां बीमार है दवा लेने जा रहे थे साइकिल टिका के किनारे तुम भी खड़े हो गए कि मां समझे मां की दवा में क्या है, घंटे दो घंटे की देर भी होगी चलेगा, मगर ये तमाशा छोड़ा नहीं जा सकता। और दो आदमी बिल्कुल लड़ने मारने को तैयार है, तुम्हारी भी उत्सुकता बढ़ती जाती कि अब कुछ होता ही है, अब कुछ होने वाला है, और अगर संयोग से कुछ ना हो तो तुम बड़े उदास लौटे हो, तुमने ख्याल किया है? कुछ ना हो वो दोनों आदमी का, अच्छा भाई क्या फायदा लड़ने झगड़ने से, एकदम गांधीवादी हो जाएंगे कि चलो महात्मा गांधी की जय, क्या फायदा, हम तुमको मारे तुम हमको मारो, कोई सार नहीं। तो जितनी भीड़ खड़ी है वो उदास लौटेगी कि कुछ भी नहीं हुआ, घंटा भर खराब हुआ, गाली गलौज काफी बकी गई। लोग दूसरे के दुख में एक तरह का रस लेते और दूसरे के सुख से पीड़ित होते हैं। तुमने देखा तुम बड़ा मकान बनाओ पूरा गांव तुम्हारे खिलाफ हो जाता, तुम सुखी दिखाई पड़ो किसी को सुख नहीं होता, तुम स्वस्थ हो किसी को अच्छा नहीं लगता, तुम खाते पीते मजे से जी रहे हो तुम्हारे घर संगीत होता है नाच होता है सारा गांव तुम्हारे दुश्मन हो जाता है, गरीब भोगी है भ्रष्ट नरक जाएगा, और तुम भूखे मरो धूप में बैठ जाओ घाव बना लो सारे गांव की दया और सहानुभूति तुम्हारे लिए। तुम्हारे घर में आग लग जाए तो लोग सहानुभूति प्रकट करने आते, वो कहते हैं बड़ा बुरा हो गया, और तुम्हारा घर बड़ा हो जाए और एक नई मंजिल बन जाए कोई नहीं आता कहने के बड़ा अच्छा हो गया। जरा सोचना जब अच्छा होता है कोई कहने नहीं आता कि अच्छा हो गया, और जब बुरा होता है तब लोग कहने आते हैं कि भाई बहुत बुरा हो गया, मगर जब वो कहते हैं बहुत बुरा हो गया तब उनकी आंखों में झांकना तुम पाओगे वो रस ले रहे हैं सहानुभूति में मजा आ रहा, तुम आज नीची हालत में हो आज तुम पर दया करने का मौका मिला, ये मौका कभी मिला नहीं था, तुम कभी बुरी हालत में थे नहीं आज तुम चारों खाने चित्त पड़े हो, आज कोई भी दया कर सकता राह चलता राहगीर कह सकता है भाई बहुत बुरा हुआ, लेकिन उसके भीतर देखो कुछ मजा ले रहा है। मनुष्य का मन बड़ा जटिल है। ये 5 भिक्षु बुद्ध की सेवा में रत रहे, लेकिन जब बुद्ध ने सब उपवास छोड़ दिया तप छोड़ दिया इन्होंने बुद्ध को छोड़ दिया, इन्होंने कहा ये भ्रष्ट हो गया, गौतम भ्रष्ट हो गया, अब ये काम का नहीं रहा, ये पतित हो गया। जब तक ये गौतम अपने को सता रहा था महातपस्वी था, जिस दिन बुद्ध ने ये सब व्यर्थ मूढ़ता छोड़ दी, ये आत्महिंसा छोड़ दी, ये आत्मघात छोड़ दिया, उसी दिन 5 भिक्षुओं ने उनको छोड़ दिया, उन्होंने कहा अब हमारे काम के ना रहे, अब हम कोई दूसरा गुरु खोजेंगे, वो उन्हें छोड़ के चले गए। उसी रात बुद्ध को ज्ञान हुआ, जिस सांझ को 5 भिक्षु छोड़ के चले गए उस रात बुद्ध को ज्ञान हुआ। दूसरे दिन सुबह बुद्ध को पहली याद यही आई कि वो बेचारे पांच इतने दिन मेरे साथ रहे और आखिरी घड़ी छोड़ के चले गए। अब जबकि मेरे पास देने को कुछ था, लेने वाले नहीं, और जब मेरे पास देने को कुछ भी नहीं था, मैं खुद ही मूढ़ता और अंधकार से भरा था, तब वो मेरे पीछे लगे रहे। ऐसी उल्टी दुनिया है। इसलिए बुद्ध उनकी खोज करते हुए निकले कि वो जहां भी गए हों उनको जाके पहला संदेश उनको दिया जाए। यद्यपि वो मुझे त्याग गए हैं, यद्यपि उन्होंने मान लिया कि मैं भ्रष्ट हो गया, लेकिन मेरे साथ बहुत दिन रहे, इतना कर्तव्य मेरा है कि पहला संदेश उन्हीं को दूं। इसलिए बुद्ध ने पहला प्रवचन उन्हीं पांच भिक्षुओं को दिया। उनका पीछा करते बुद्ध सारनाथ तक आए। जहां जहां पता चला कि वो दूसरे गांव चले गए, बुद्ध वहां गए। सारनाथ जाके उन्होंने देखा एक वृक्ष के नीचे पांचों भिक्षुओं को बैठे हुए। उन पांचों भिक्षुओं ने देखा बुद्ध को आते हुए, बोले कि भ्रष्ट गौतम आ रहा, हम इसको नमस्कार ना करें, ये नमस्कार के योग्य भी नहीं, ये बिल्कुल पतित हो गया। तो वो पीठ करके बैठ गए। बुद्ध जब उनके पास गए, जब पास जाके खड़े हो गए, और बुद्ध ने कहा, एक बार मेरी तरफ तो देखो, जिसे तुम छोड़ आए थे मैं वही नहीं, आज जो आया है कोई और है, एक बार मेरी तरफ देखो। और उन चारों ने, पांचों ने आंख उठा के बुद्ध की तरफ देखा। पहले एक उनके चरणों में गिरा, फिर दूसरा, फिर पांचों उनके चरणों में गिरे, क्षमा मांगने लगे कि हमें क्षमा कर दें, हमने तो सोचा कि भ्रष्ट गौतम आ रहा है, लेकिन हम देख सकते हैं कि सब रूपांतरित हो गया, ज्योति का उदय हुआ है, तुम प्रकाशित हो गए। कैसे प्रकाशित हुए, हमें राह बताओ। बुद्ध ने कहा, इसीलिए आया हूं। ये घटना सारनाथ जाते हुए रास्ते पर घटी। भगवान सर्वप्रथम ऋषिपतन मृगदाय में पंचवर्गीय भिक्षुओं को उपदेश देने के लिए उरुवेला से काशी की ओर आ रहे थे। मार्ग में उन्हें एक उपक आजीवक मिला। आजीवक एक संप्रदाय था उस समय का, जो अब विनष्ट हो गया। बुद्ध और जैन दोनों संप्रदाय आजीवक संप्रदाय से बहुत मिलते जुलते, उसी की छायाएं इन पर, उसी के प्रतिबिंब है, उसी की ध्वनियां हैं। आजीवक संप्रदाय का एक भिक्षु मिला, उसने बुद्ध को देखा, वो चकित हो गया, ऐसा आदमी कभी नहीं देखा था, ऐसा ज्योतिर्मय, ऐसी शुद्ध इंद्रियां, ऐसी निर्मल आंखें, ऐसी निर्मल छाया, ऐसा चारों तरफ शांति का वातावरण। उसने कहा, आवुष, तेरी इंद्रियां परशुद्ध और बड़ी विमल हैं, तुम किस उद्देश्य से संन्यास्त हुए थे, अपना उद्देश्य मुझे भी बताओ, मैं भी खोज रहा हूं, कौन तुम्हारे गुरु, कौन तुम्हारे शास्ता, मैं भी खोज रहा हूं, मुझे अब तक ठीक गुरु नहीं मिला, ठीक मार्ग नहीं मिला, और तुम किसके धर्म को मानते हो, कौन से धर्म में तुम्हारी श्रद्धा है, किस शास्त्र पर तुम्हारा भरोसा है, तुम किन विधियों के अनुयायी हो। तब शास्ता ने उसे कहा, मेरे आचार्य या उपाध्याय नहीं, मैं किसी धर्म को नहीं मानता, मेरी किसी शास्त्र में श्रद्धा नहीं, मैंने जो पाया है अपने से पाया है। ये बुद्ध का परम संदेश, क्योंकि जो मिलना है वो तुम्हारे भीतर पड़ा है, कोई दूसरा थोड़ी देने वाला है। हस्तांतरण नहीं होता सत्य का, तुम्हारे भीतर पड़ा है। गुरु अगर कुछ करता है तो इतना ही कि तुम्हारे भीतर जो पड़ा है उसको ही पुकारता है, उसे तुम स्वयं भी पुकार सकते हो। गुरु अनिवार्य नहीं है बुद्ध के मार्ग पर, तुम स्वयं न पुकार सको तो उसकी जरूरत है, तुम स्वयं अपने को असमर्थ पाओ तो उसकी जरूरत है, अन्यथा तुम स्वयं भी पुकार सकते हो, क्योंकि खदान तुम्हारे भीतर है, तुम स्वयं भी खोज सकते हो। गुरु तुम्हें धन देगा नहीं, सिर्फ इतना ही कह देगा कि इस तरह मैंने अपने भीतर खोदा, इसी तरह तुम भी अपने भीतर खोद लो, मगर जो है तुम्हारे भीतर है, जो है तुम्हारे स्वभाव में छिपा है, जो है उसे तुम लेकर ही आए हो, वो तुम्हारा जन्म सिद्ध स्वभाव सिद्ध अधिकार है। इसलिए बुद्ध ने कहा कि मेरा कोई गुरु नहीं है, मैंने गुरुओं के द्वारा नहीं पाया, मेरा कोई आचार्य नहीं, मेरा कोई उपाध्याय नहीं। ऐसा नहीं कि मैं गुरुओं के पास नहीं रहा, रहा लेकिन वहां मुझे कुछ मिला नहीं, और जब मिला तब मैं किसी गुरु के पास नहीं था। और जो मैंने पाया है वो कुछ ऐसा है कि अब मैं तुमसे कह सकता हूं कि उसे किसी और के पास लेने जाने की जरूरत नहीं, अपने भीतर ही चले जाओ तो मिल जाए। शास्त्रों में नहीं है, स्वयं में है, शब्दों और सिद्धांतों में नहीं, तुम्हारी चेतना में बसा है। तुम मंदिर हो, परमात्मा तुम्हारे भीतर बैठा है। मैं सभी को परास्त करने वाला हूं। बुद्ध ने कहा मेरे जितने शत्रु थे वे सब गए, मैं सब जानता हूं, जो जानने योग्य है वो मुझे दिखाई पड़ गया है। मैं सभी धर्मों तृष्णा इत्यादि से मुक्त हो गया हूं, अलिप्त हो गया हूं, सर्वत्यागी हूं। सर्वत्यागी का अर्थ होता है मैंने त्याग को भी त्याग दिया है। मैं सब धर्मों से मुक्त हो गया हूं, मैंने जगत की तृष्णा तो छोड़ ही दी है, मोक्ष की तृष्णा भी छोड़ दी। मेरा कोई उद्देश्य ही नहीं है, मैं अब बिल्कुल निरुद्देश्य हूं, जैसे फूल खिलता निरुद्देश्य, जैसे सुबह सूरज निकलता निरुद्देश्य, ऐसा मैं निरुद्देश्य हूं। मेरा कोई लक्ष्य नहीं, सब लक्ष्य गए, सब उद्देश्य गए, सब भविष्य गया, मेरी कोई वासना नहीं, मोक्ष की भी नहीं। मैं तृष्णा के नाश से मुक्त हूं, ये बड़ा अजीब वचन। बुद्ध ये नहीं कहते कि मैं तृष्णा से मुक्त हूं, बुद्ध कहते हैं मैं तृष्णा से तो मुक्त हूं ही, मैं तृष्णा के नाश से भी मुक्त हूं। तृष्णा तो गई ही, अतृष्णा भी गई, नहीं तो उल्टा हो जाता है। संसार पकड़े थे पहले, फिर संसार तो छोड़ दिया, फिर संन्यास पकड़ लिया, मगर पकड़ कायम रही। धन पकड़े थे पहले, धन तो छोड़ दिया, अब निर्धनता पकड़ ली, मगर पकड़ जारी रही। बुद्ध कहते हैं परम त्याग तो तब है जब त्याग भी छूट जाए, परम संन्यास तो तब है जब संसार तो छूटे ही छूटे, संन्यास से भी मुक्ति हो जाए, नहीं तो वो भी पकड़ बन जाए तो कुछ फायदा ना हुआ। मुट्ठी पूरी खुल जानी चाहिए, मैं तृष्णा से मुक्त, तृष्णा के नाश से मुक्त हूं। मैं स्वयं ही विमल ज्ञान को जानकर जागा, मैं किसको गुरु कहूं। और इतना ही नहीं, वो कहते कि मैं किसको गुरु कहूं, वो कहते मैं किसको शिष्य सिखाऊं। न मैंने किसी से पाया, मैंने अपने भीतर पाया, तो जो मेरे पास आएंगे वो भी अपने भीतर ही पाएंगे, शिष्य कहने से क्या सार है। इसलिए बुद्ध ने कहा मैं मित्र हूं, न तो गुरु तुम्हारा न तुम मेरे शिष्य, मैं मित्र हूं। और बुद्ध ने कहा कि मेरा जो भविष्य में पुनः आगमन होगा, मेरा नाम होगा मैत्रेय, तब मैं परिपूर्ण मित्र रूप में प्रकट होऊंगा। अंतिम दृश्य। एक बार देवताओं में यह प्रश्न उठा कि दानों में कौन दान श्रेष्ठ है, रसों में कौन रस श्रेष्ठ है, रतियों में कौन रति श्रेष्ठ है, और तृष्णा छह को क्यों सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। कोई भी इन प्रश्नों का उत्तर न दे सका। देवताओं ने सबसे पूछने के बाद इंद्र से पूछा, वह भी इसका उत्तर न दे सका। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने जेतवन में जाकर भगवान के पास आए इन प्रश्नों को पूछा। भगवान ने कहा धर्म के अनुभव में सब प्रश्नों के उत्तर हैं, फिर प्रश्न बहुत नहीं है, एक ही है। सोचने मात्र से समाधान नहीं होगा, जागो, जागने में समाधान है, धर्म के अनुभव में समाधान है। सब व्याधियों के लिए एक ही औषधि है धर्म। तब उन्होंने ये सूत्र कहा, सब्वदानम धम्मदानम जिनाति सब्बम रसम धम्म रसो जिनाति सब्बम रति धम्म रति जिनाति तणक्यो सब दुखम जिनाति। धर्म का दान सब दानों में बढ़कर है, धर्म रस सब रसों में प्रबल है, धर्म में रति सब रतियों में बढ़कर है, और तृष्णा का विनाश सारे दुखों को जीत लेता है, और धर्म की उपलब्धि उससे होती, इसलिए सर्वश्रेष्ठ है। पहले इस दृश्य को हृदयंगम कर ले। एक बार देवताओं में प्रश्न उठा, देवताओं के पास कुछ और काम है भी नहीं, व्यर्थ की बकवास, देवता करेंगे भी क्या, काम तो वहां कुछ बचता नहीं, काम तो समाप्त हो गया। कल्प वृक्षों के नीचे बैठकर सभी इच्छाएं पूरी हो जाती, देवता सुख ही सुख में जीते, जीवन का बाहर का व्यवसाय तो बंद हो जाता है। जब बाहर का व्यवसाय बंद हो जाता तो चित्त के सब व्यवसाय शुरू हो जाते, तब बड़ा सोच विचार उठता, बड़े विवाद उठते। ख्याल करना, दर्शन शास्त्र तभी पैदा होता है जब पेट ठीक से भरा हो। भूखे भजन न हो गोपाला, भूखे भजन हो भी नहीं सकता। जीवन की सीढ़ियां, शरीर की जरूरतें पूरी हो जाएं तो मन की जरूरतें पैदा होती, शरीर की जरूरतें अधूरी रहें तो मन की जरूरतें कभी पैदा नहीं होती। अब कोई भूखा मर रहा है, उसको तुम कहो कि ये विथोवन का संगीत सुनो, वो तुम्हारा सिर फोड़ देगा। वो कहेगा मैं भूखा मर रहा हूं, विथोवन का संगीत आप कह क्या रहे हैं, आप मेरा अपमान कर रहे हैं। और भूखे पेट में विथोवन का संगीत जाएगा कैसे, भूखा संगीत सुन कैसे सकता है। कोई भूखा मर रहा है और तुम कहते हो पढ़ो कालिदास की कविताएं, से बड़ा आनंद आएगा। वो कहता है कुछ रोटी मिल जाए, कालिदास आप पढ़ो, रोटी मुझे दे दो। एक सीढ़ी है, शरीर की जरूरत पूरी हो तो मन की जरूरत, मन की जरूरत में काव्य है, संगीत है, कला है। फिर मन की जरूरतें पूरी हो जाएं तो आत्मा की जरूरतें पैदा होती। जिसने अभी संगीत नहीं सुना और जिसने काव्य का रसास्वादन नहीं किया, वो धर्म के जगत में प्रवेश न कर सकेगा। और जिसने अभी दर्शन शास्त्र के ऊहा पोह में नहीं उलझन ली, नहीं डोला, वो भी धर्म में प्रवेश नहीं कर सकेगा। धर्म आखिरी जरूरत है, धर्म अंतिम है, वो आत्मा की जरूरत है। इसलिए जब कोई देश समृद्ध होता है तो धार्मिक होता है, जब कोई देश गरीब हो जाता है अधार्मिक हो जाता है। इसलिए भारत जैसे देश की अभी धार्मिक होने की संभावना नहीं, अभी भारत के कम्युनिस्ट होने की संभावना है, धार्मिक होने की संभावना नहीं। इसलिए लोग हैरान भी होते हैं, पश्चिम से लोग आ रहे हैं पूरब में तलाश करते धर्म के, पूरब के लोग हैरान होते हैं कि मामला क्या है, पूरब के लोग पश्चिम जा रहे हैं, कैसे अच्छी इंजीनियरिंग आ जाए, कैसे अच्छे डॉक्टर हो जाएं, कैसे टेक्नोलॉजी, कैसे विज्ञान, इसके लिए पश्चिम जा रहे हैं। पूरब के सोच विचार से लोग पश्चिम की तरफ भाग रहे हैं कि एक डिग्री पश्चिम से और ले आए, और पश्चिम से लोग डिग्रियां इत्यादि फेंक कर कूड़े करकट में डाल के, यहां मेरे सन्यासियों में कम से कम 20 PhD, तुम एक को भी ना पहचान पाओगे कि आदमी PhD, यहां कम से कम 50 MA, तुम एक को भी ना पहचान पाओगे, और ऐसा तो बहुत कम है कि ग्रेजुएट कोई ना हो, मगर तुम एक को ना पहचान पाओगे, सब कचरे में डाल के चले आए। दो कौड़ी की हो गई बात है, यहां कोई PhD हो जाता तो अखबारों में खबर छपती, जुलूस निकाला जाता। मैंने सुना इलाहाबाद में जब पहला आदमी मैट्रिक हुआ था तो हाथी पे बैठ के जुलूस निकाला गया। यहां कोई आदमी पश्चिम पढ़ने जाता था, अखबारों में खबर निकलती जैसे कोई भारी घटना घट रही कि वो पश्चिम पढ़ने जा रहे हैं। पश्चिम पूरब की तरफ आ रहा क्योंकि पश्चिम अब संपन्न है, उसने शरीर का सुख जाना, मन के सुख जाने, अब आत्मा की पीड़ा उठनी शुरू हुई। इस बात की बहुत संभावना है कि भविष्य में पश्चिम पूरब हो जाए और पूरब पश्चिम हो जाए। इस बात की बहुत संभावना है कि सूरज पश्चिम से उगे और पूरब में डूबे। देवताओं के पास कुछ और तो काम नहीं, इसलिए अक्सर ऐसी बहुत कहानियां आती बौद्ध शास्त्रों में, जैन शास्त्रों में, हिंदू शास्त्रों में, देवताओं में बड़ा विवाद उठता है छोटी छोटी बात पर। हालांकि देवता उत्तर किसी बात का भी नहीं पा सकते, क्योंकि सब बुद्धि का खिलवाड़, आत्मिक अनुभव नहीं। स्वर्ग में आत्मिक अनुभव नहीं घटता, नहीं घट सकता। सुखी आदमी आत्मा का चिंतन शुरू करता है, मगर चिंतन में ही अटका रहता है। सुखी आदमी को चिंतन से आगे जाना पड़े, अनुभव में, साधना में। एक बार देवताओं में प्रश्न उठा, दानों में कौन दान श्रेष्ठ, रसों में कौन रस श्रेष्ठ, रतियों में कौन रति श्रेष्ठ, और तृष्णा छह को क्यों सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। कोई भी इन प्रश्नों का उत्तर न दे सका। ये मत समझना कि उत्तर लोगों ने नहीं दिए, उत्तर तो दिए होंगे, हजार उत्तर दिए होंगे, लेकिन कोई भी उत्तर उत्तर नहीं था। तुम ये मत सोचना कि देवता बिल्कुल बुद्धू है, क्योंकि तुम ये कहानी पढ़ोगे तुमको लगेगा अरे हम ही उत्तर दे सकते, इसमें देवता उत्तर नहीं दे सके। ये तो बात कुछ जस्ती नहीं। तुमसे कोई पूछे दानों में कौन दान श्रेष्ठ, तुम भी कुछ उत्तर दोगे, सही गलत की बात और। उत्तर तो दिए गए होंगे, लेकिन कोई उत्तर समाधान कारक नहीं था। कोई उत्तर ऐसा नहीं था कि उसको सुनते ही चित्त शांत हो जाए, उसको सुनते ही सत्य का अनुभव हो जाए, उसको सुनते ही श्रवण करते ही चित्त का विकल्प जाल टूट जाए और लगे कि हां यही ठीक है। कोई ऐसा सत्य नहीं खोजा जा सका जो स्वयं सिद्ध मालूम पड़ा हो। तब देवताओं ने इंद्र से पूछा, इंद्र है देवताओं का राजा, सोचा शायद इंद्र को पता हो, वह भी इसका उत्तर न दे सका। नहीं कि उसने उत्तर न दिए होंगे, जरूर उत्तर दिए होंगे, उत्तर तो कोई भी देता है। तुम गधे से पूछो वो भी उत्तर देगा, तुम जरा किसी से भी पूछो, कोई भी बात पूछो, उसे पता हो कि ना हो मगर वो उत्तर देगा। उत्तर देने का मौका कोई नहीं चूकता, क्योंकि ज्ञानी बनने का मौका मुफ्त में कौन चूके। किसी से भी पूछो, जिन बातों का उन्हें कोई अनुभव नहीं, ऐसा आदमी तुम्हें मुश्किल से मिलेगा जो कहेगा मुझे पता नहीं। ऐसा आदमी मिले उसके चरण पकड़ लेना, क्योंकि उस आदमी में कुछ सच्चाई है। नहीं तो हर एक उत्तर दे रहा है, कुछ भी पूछे जाओ उत्तर दे रहा है, कुछ पता नहीं है और उत्तर दे रहा है। जिन्होंने खुद कभी जिंदगी में कुछ नहीं किया वो हर एक को सलाह दे रहे हैं। जो अपनी सलाहों पर कभी नहीं चले, मौका आ जाए फिर भी नहीं चलेंगे, वो दूसरों को सलाह दे रहे हैं, दूसरों को मार्ग दिखा रहे हैं। यहां अंधे अंधों को मार्ग दिखा रहे हैं, और इसलिए सारे लोग गड्ढों में पड़े, नेता भी और अनुयायी भी। इंद्र ने भी उत्तर दिया होगा, राजा है देवताओं का, ऐसे स्वीकार तो नहीं कर लिया होगा कि मुझे पता नहीं। पहले तो अकड़ के बैठा होगा, सिंहासन पर कहा होगा अच्छा सुनो, सब समझाया होगा, मगर कोई तृप्त नहीं हुआ। मजबूरी में बुद्ध के पास आना पड़ा। उत्तर तो बुद्धों के पास ही है, बुद्धत्व में ही उत्तर है, जागे हुए में ही उत्तर है, जो भीतर ज्योतिर्मय हुआ है उसी के पास उत्तर है। भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा धर्म के अनुभव में सब प्रश्नों के उत्तर है। तुम्हारे प्रश्न अलग अलग नहीं है। तुम पूछते हो दानों में कौन दान श्रेष्ठ, रसों में कौन रस श्रेष्ठ, रतियों में कौन रति श्रेष्ठ, और तृष्णा छह को सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा है, ये कोई अलग अलग प्रश्न नहीं है, एक ही प्रश्न है और एक ही इनका उत्तर है। मगर सोचने मात्र से समाधान न कभी हुआ है न होगा, जानने से समाधान होता है, दर्शन से समाधान होता है, अनुभव से समाधान होता है। सब व्याधियों की एक ही औषधि है, बुद्ध ने कहा जागो, मेरे जैसे हो जाओ, जैसे मैं जागा ऐसे तुम जागो। जागते ही सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। और क्या उत्तर है इन प्रश्नों के? तो बुद्ध ने कहा धर्म का दान सब दानों से बढ़कर है। धन देने से क्या होगा? धन से तुम्हें ही कुछ नहीं मिला तो दूसरे को देने से क्या होगा? धन देने का मतलब ही यह है कि तुमने तो पाया कि कचरा है, अब तुम दूसरे पे टाल रहे हो। धर्म के दान से, धर्म दान क्या? पहले तो धर्म को पाओगे तभी तो दान कर सकोगे ना, जो तुम्हारे पास नहीं उसका दान कैसे करोगे। धन हो तो धन का दान कर सकते हो, धर्म हो तो धर्म का दान कर सकते हो। धर्म भीतर का धन है, धर्म आत्म धन है। पहले धर्म को पालो, फिर उसे बांटो, फिर जो भी धर्म के लिए प्यासा दिखे उसमें उंडेल दो, तुम जागो और दूसरों को जगाओ। धर्म का दान सब दानों में श्रेष्ठ, और धर्म रस सब रसों में प्रबल है। संगीत में थोड़ा सा रस है, क्यों? क्योंकि संगीत में भी थोड़ी सी तन्मयता हो जाती है। संभोग में भी थोड़ा रस है, क्योंकि संभोग में भी क्षण भर को तन्मयता हो जाती, मगर धर्म रस में सदा को तन्मयता हो जाती। गए सो गए, फिर कोई लौटता नहीं, डूबे सो डूबे, एक रस हो जाते हो परमात्मा में। संभोग में जिससे तुम्हारा प्रेम है क्षण भर को एक रस होते हो, फिर अलग हो गए, और फिर अलग होने की पीड़ा और भयंकर हो जाती। संगीत थोड़ी देर को कानों को मीठा लगता है, फिर संगीत चला गया, फिर शोरगुल है जगत का। शराब पी ली, थोड़ी देर को तन्मय हो गए, फिर नशा उखड़ेगा। धर्म ऐसा नशा है जो एक दफे हुआ तो फिर उखड़ता नहीं, पिया सो पिया। और धर्म ऐसा नशा है कि बेहोशी भी लाता है और होश को नष्ट नहीं करता, होश को बढ़ाता है। धर्म अद्भुत नशा है, होश और बेहोशी साथ साथ पैदा होते। एक तरफ मस्ती छा जाती और एक तरफ परम होश भी होता है। तो धर्म रस सब रसों में बढ़कर, और धर्म में रति सब रतियों से बढ़कर है। प्रेमों में सबसे बड़ा प्रेम है धर्म से प्रेम, रतियों में सबसे बड़ी रति है धर्म रति। स्त्री के साथ थोड़ी देर खेलो थोड़ा सुख है, पुरुष के साथ थोड़ी देर खेलो थोड़ा सुख है, रति क्रीड़ा। लेकिन परमात्मा के साथ खेल लो सदा के लिए, धर्म रति बुद्ध कह रहे हैं उसको। अस्तित्व के साथ संभोग रत हो जाओ, अस्तित्व के साथ एक हो जाओ, फिर कोई अलग ना कर सकेगा। क्यों? क्योंकि अस्तित्व के साथ वस्तुतः हम एक ही हैं, हमने अलग मान लिया वो हमारी भ्रांति, उसी भ्रांति के कारण दुख है। भ्रांति गिर जाए फिर सुख ही सुख है। और तृष्णा का विनाश सर्वश्रेष्ठ कहा है, क्योंकि तृष्णा के विनाश से ही धर्म उपलब्ध होता है। इसलिए बुद्ध ने कहा तुम्हारे प्रश्न अलग अलग नहीं, एक ही प्रश्न है, और मेरा उत्तर भी एक है, एक शब्द में, धर्म। एस धम्मो सनंतनो। आज इतना ही।
0: हवस्त आदरणीय श्रोता, आजको यो प्रवचन श्रृंखला यति नै। यसको बाँकी अंश आगामी कार्यक्रममा सुन्न सक्नुहुनेछ। आजको यो कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।

0: Weekend Classic Radio Show.
1: कभी कभी खुद से झूठ बोलकर चुपके से याद करते हैं तुम्हें, हर शाम तुम्हारी तस्वीर देखकर थोड़ा और प्यार करने लगते हैं तुम्हें, तुम पास होते हुए भी साथ में नहीं, यूं ही हर याद पर खत लिखा करते हैं तुम्हें, खुश नसीब है वो चांद जिसकी नजर है तुम पर, हम उसी चांद को देखकर ढूंढ लिया करते हैं तुम्हें, कभी कभी खुद से झूठ बोलकर चुपके से याद करते हैं तुम्हें। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, और लो फिर से आ गई मैं, यानी कि आपकी रुचि बॉलीवुड के किस्से कहानियों के साथ। आज के इस शो में हम उस सितारे के बारे में बात करेंगे जो इंडियन सिनेमा के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर्स में से एक रहे हैं, जिन्हें हम ट्रेजेडी किंग के नाम से जानते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार जी की। क्या आपको पता है दिलीप साहब के पास में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है फॉर बीइंग दैट वन इंडियन एक्टर जिन्हें सबसे ज्यादा अवार्ड्स मिले हैं। तो चलिए आज इन्हीं के काम को, इन्हीं की जिंदगी को सेलिब्रेट करते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये बचपन से कभी एक्टर वैक्टर बनना नहीं चाहते थे? कैसे बन गए एक्टर? किसको ये अपने एक्टर बनने का श्रेय देते हैं? बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद, लेकिन उसके पहले सुनिए यहाँ पर पहला गाना। आज साला मैं तो साहब बन गया फिल्म सगीना से।
2: साला मैं तो साहब बन गया, अरे साला मैं तो साहब बन गया, ये साहब बन के कैसा तन गया, ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे गोरा कोई लंदन का। साला मैं तो साहब बन गया, ये साहब बन के कैसा तन गया, ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे गोरा कोई लंदन का।

बहन कर कहता तू दे भांडे वाह फकीरे वाह फकीरे सूट पहन कर कहता तू दे भांडे कौआ जैसे पंख मयूर का अपने दुम में बांधे अपने दुम में बांधे अपने दुम में बांधे अरे क्या जाना हम इस भेजा में क्या क्या नक्शा खींचा क्या जाना हम इस भेजा में क्या क्या नक्शा खींचा लीडर लोग की ऊंची बातें क्या समझे तुम नीचा क्या समझे तुम नीचा मेरा वो सब जाहिल बन गया इस साला में तो सा बन गया साला में तो साहब बन गया साहब बन के कैसा तन गया ये सूट मेरा देखो ये फूट मेरा देखो जैसे गोरा

0: बंदर की फिर भी लगती है अलबेली, सूरत है बंदर की फिर भी लगती है अलबेली, कैसा राजा भोज बना है मेरा गंगू तेली।
1: क्या गंगू तेली?
0: तुम लंगोटी वाला ना बदला है ना बदलेगा, तुम लंगोटी वाला ना बदला है ना बदलेगा, तुम सब काला लोग का किस्मत हमसा ना बदलेगा, हमसा ना बदलेगा। सीना देखो कैसा तन गया, साला मैं तो साहब बन गया, साहब बन के कैसा तन गया।

कुछ खबर नहीं। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। मधुमती फिल्म का गाना था ये, मुकेश जी और लता जी की आवाज में। दिलीप साहब को यानी कि यूसुफ जी को आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारे शो पे। इनके बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है, लेकिन इससे पहले कि मैं दिलीप साहब द एक्टर के बारे में बात करूं, मैं यूसुफ जी के बारे में बात करना चाहूंगी। एज अ छोटा सा बच्चा कैसी थी इनकी जिंदगी, क्या आपको पता है 1930 में इनके पिता एक फ्रूट मर्चेंट हुआ करते थे और उन्होंने कहा कि देखो सबको मिल करके घर चलाना पड़ेगा, तभी हमारा परिवार जो है वो आगे बढ़ पाएगा। और ये जानने के बाद यूसुफ साहब को उनके पिता ने एक कैंटीन खोल कर दे दी थी। बस हमारे दिलीप साहब के लिए यही करियर था, उन्होंने यही सोच के रखा था कि वो जिंदगी भर एक कैंटीन चलाएंगे, एक रेस्टोरेंट बना लेंगे उसका हद से हद, और खुशी खुशी अपनी जिंदगी निकाल लेंगे। लेकिन वो रोज जब अपने कैंटीन में खाना बेचकर, फ्रूट्स बेचकर अपनी रोजी कमाते थे, तब काफी अदाए भी दिखाया करते थे। और इन्हीं को देख करके देविका रानी जी और उनके हस्बैंड हिमांशु राय बड़ा इंप्रेस हो गए, जिन्हें हमारे दिलीप साहब श्रेय देते हैं फिल्मों में आने का। दिलीप साहब को यही दोनों अपनी एक फिल्म ज्वार भाटा में कास्ट करने के बाद बॉलीवुड तक लेकर के आए थे। उसके बाद कई सालों तक दिलीप साहब की कुछ फिल्में नहीं चली, लेकिन फिर आई उनकी फिल्म जुगनू 1947 में, जो कि बनी दिलीप साहब की पहली हिट फिल्म। और बस उसके बाद उनका और सिनेमा का रिश्ता गहरा होता चला गया। वैसे फिल्में प्रोड्यूस करने में भी दिलीप साहब ने अपना हाथ आजमाया था। गंगा जमुना हो या फिर और भी ऐसी कई सारी फिल्में जो कि दिलीप साहब ने प्रोड्यूस की थी। लेकिन क्या आपको पता है कि फिल्मी करियर तो अच्छा चल रहा था, लेकिन पर्सनल लाइफ में दिलीप साहब ने बहुत ठोकरें खाई। किसे हुआ था हमारे दिलीप साहब को पहला प्यार, बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद। लेकिन उसके पहले सुनिए ये गाना नया दौर फिल्म से मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में, वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर।

करी थई त थई त थई थई थई झाक दिनक दिन थाक तिनक तिन थाक दिनक दिन थाक तिनक तिन था आँख मिल जई है सजनिया से तो नाचन लगी है।

0: एड्रेस सुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू, फोन नंबर 42 43 736।
1: रेडी मीडिया शूटिंग शर्टेज मलाई ट्रैक शूट चाहिए
2: मलाई ट्रॉक
3: मलाई पनी सूट
4: अनि मलाई

ये वो गाना था जो आज तक भी लोग अपने बच्चों को सुनाते हैं। सौदागर फिल्म से गाना मोहम्मद अजीज और सुदेश भोसले जी की आवाज में। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। दिलीप साहब को मधुबाला जी के साथ में लिंक किया जाता है, और क्यों ना किया जाए। दिलीप साहब खुद मानते हैं कि उन्हें पहला प्यार मधुबाला जी से ही हुआ था। 1951 की तराना फिल्म से इनके प्यार की शुरुआत हुई थी। उनकी जोड़ी सुपरहिट हो गई थी और असल में भी दोनों को प्यार हो गया था। 1954 में जब वो अमर फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, तब इन दोनों ने एक दूसरे को बताया कि हमें इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन सबके सामने पब्लिकली इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेने के बावजूद ये रिश्ता ज्यादा चला नहीं। 1957 में इनका ब्रेकअप हो गया, और वो दोनों जब मुगले आजम की शूट कर रहे थे, तब क्या आपको पता है कि एक दूसरे से बात भी नहीं किया करते थे। एक काफी इंटेंस, काफी रोमांटिक सीन था मुगले आजम में, आपको याद होगा, जब एक पंख होता है जो कि दिलीप साहब और मधुबाला जी के होठों के बीच में आ जाता है। उस सीन को देख करके लगता है कि इन दोनों के बीच में कितना प्यार रहा होगा। लेकिन वो समय ऐसा था जब ये दोनों एक दूसरे से हेलो हाय भी नहीं किया करते थे। बातचीत तो दूर की बात है। सोचिए, ऐसे तो उम्दा एक्टर हमारे दिलीप साहब थे। बाद में इनकी शादी जरूर सायरा बानो जी से हुई, जिन्हें उस समय की ब्यूटी क्वीन माना जाता था। और दिलीप साहब आज भी कहते हैं कि उनकी जिंदगी को पटरी पर लेकर के आई सायरा बानो जी। तो चलिए इन्हीं के प्यार के नाम सुनते हैं अगला गाना, मुकेश जी की आवाज में, याहूदी फिल्म से। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो।

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। देखिए, मैं तो दिलीप साहब की बहुत बड़ी फैन हूं। आई एम श्योर आप भी दिलीप साहब के बहुत बड़े फैन हैं, तभी तो इस एपिसोड को सुन रहे हैं आप। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक ऐसे बॉलीवुड के एक्टर भी हैं जो कि दिलीप साहब के बहुत बड़े फैन रहे हैं। नहीं, शाहरुख खान तो है ही, वो तो सभी जानते हैं शाहरुख खान कितने बड़े फैन हैं दिलीप साहब के। लेकिन क्या आपको पता है, अमिताभ बच्चन जी भी उतने ही बड़े फैन रहे हैं दिलीप साहब के। इवन बिफोर अमित जी एक्चुअली बिकेम एन एक्टर, वो दिलीप साहब के बहुत बड़े फैन हुआ करते थे। एक तरफ जहां दिलीप साहब की फैन फॉलोइंग दिन दुगुनी रात चौगुनी बढ़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ हमारे शहनशाह अमिताभ बच्चन जी उस समय कॉलेज में थे, और अमित जी ने जब उनकी गंगा जमुना देखी दिलीप साहब की, तब उस समय किस तरह से दिलीप साहब एक पठान होने के बावजूद एफर्टलेसली एक रस्टिक यूपी के कैरेक्टर को निभाते हैं, ये देख करके अलाहाबाद की यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हमारे अमित जी दिलीप साहब के बहुत बड़े फैन हो गए थे। इतने बड़े कि जब अमित जी एक एक्टर बने तो ही मेड श्योर कि वो दिलीप साहब से मिलें और उन्हें बताएं कि एक्टर बनने के पीछे, अमिताभ बच्चन जी के एक्टर बनने के पीछे दिलीप साहब का कितना बड़ा हाथ रहा। अमिताभ बच्चन जी की तरफ से दिलीप साहब के लिए कुछ लाइनें मैं बोलना चाहूंगी। सुबह का हर पल प्यारी जिंदगी दे आपको, दिन का हर पल खुशियां दे आपको, जहां गम की हवा छू भी ना सके आपको, खुदा वो जन्नत सी जमी दे आपको। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर अगला गाना जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो है क्रांति फिल्म से।

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। वैसे तो दिलीप साहब इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार्स रहे हैं। इनकी हिट फिल्मों की लाइन अगर लगाई जाए तो वो लाइन कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी फिल्में हैं जो कि दिलीप साहब ने ठुकराई और वो इनकी जिंदगी की बड़ी गलतियां बन गई। जैसे कि आपको पता है, मदर इंडिया में बिरजू का रोल जो है वो पहले दिलीप साहब को दिया गया था, लेकिन दिलीप साहब ने मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि नरगिस का बेटा बनना उन्हें रास नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा कि इसके पहले 7 फिल्मों में नरगिस मेरी लीडिंग लेडी रही है, मैंने नरगिस जी के साथ रोमांस किया है, अब एकाएक मैं उनका बेटा बनूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मदर इंडिया उनके हाथ से गई। इनफैक्ट प्यासा फिल्म में गुरुदत्त साहब दिलीप जी को लेकर के ये फिल्म बनाना चाहते थे। काफी वेट किया उन्होंने। दिलीप साहब कभी सेट्स पर आते थे, थोड़ी बहुत फिल्म शूट कर लेते थे और फिर चले जाते थे। फिर बोल देते थे कि मेरे पास में डेट्स नहीं है। इन सब चीजों से थोड़ा सा तंग होकर के गुरुदत्त साहब ने खुद से ही ये फिल्म कर ली। लेकिन जो भी हो, चाहे कुछ फिल्में उनके हाथ आईं और चाहे कुछ फिल्में दिलीप साहब के हाथ से छूट गईं, लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा कि दिलीप साहब होल्ड्स द प्रेस्टीजियस गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर हैविंग द मोस्ट नंबर ऑफ अवार्ड्स एवर वन बाय एनी इंडियन एक्टर। ऐसे हैं हमारे दिलीप साहब। सुनिए जरा, जो मेरे ना रहे मैं भी कब किसी का रहा, बिछड़ के उनसे सलीका न जिंदगी का रहा, लबों से गया जुगनू की तरह नाम उसका, सहारा अब मेरे घर में ना रोशनी का रहा, गुजरने को तो हजारों ही काफिले गुजरे, जमीन पे नक्शे कदम बस किसी किसी का रहा। दिल दिया दर्द दिया फिल्म से अगला गाना, दिलीप जी के नाम, वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैं भरि।
1: You are listening to Weekend Classic Radio Show.

0: है तेरे चिन्ह।
1: कैसा लगा आपको ये शो? हर हफ्ते हम क्लासिक रेडियो शो का एक नया एपिसोड लेकर आते हैं, सो डू ट्यून इन एवरी वीक। चलिए तो मैं रुचि यहाँ से विदा लेती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते।
2: Four eight.

0: आहा, आपका जाना पहचाना संगीत गूंजा। और देखिए जाग उठी मधुर मशहूर फिल्म संगीत के बचपन और जवानी की यादें। गीतमाला की छाओं में के सिलसिले में मैंने रेडियो सिटी पर बहुत सारे बल्कि कुल 7 प्रोग्राम पेश किए थे। एक प्रोग्राम में रेडियो सिटी के पॉपुलर प्रेजेंटर गौरव ने मुझे मदन मोहन के बारे में पूछा था।
1: लेकिन अमीर अंकल, एक बात जो मैं जानना चाहूंगा, मदन मोहन साहब से जुड़ी हुई कि वो खुद भी तो सिपाही थे।
0: तो इस पर मैंने गौरव को बताया था रेडियो सिटी पर कि किस तरह मदन मोहन कुछ बरसों के लिए आर्मी में भी भर्ती हो गए थे। लेकिन दोस्तों, मदन जी के सिपाही पने की एक बात लता जी ने भी मुझे बताई थी, जो आपको याद तो मेरे सिंडिकेटेड रेडियो प्रोग्राम संगीत के सितारों की महफिल के एक एपिसोड में सुनने को मिलेगी, या आज यहां गीतमाला की छाव में सुनिए।
2: मदन भैया 1-2 साल मिलिट्री में थे और शायद इसी वजह से उनके बर्ताव में एक ऊपरी सख्ती हुआ करती थी। कई बार बड़े रफ से लगते थे, बातें खरी खरी मुंह पर सुना देते थे। प्यार भी उनका यूं होता था कि बस हाथ उठाया और धम से मार दिया। मगर ये सख्ती सिर्फ ऊपर की थी, अंदर से तो वो बड़े भावुक थे और बड़े नर्म। और ये नरमी, ये भावुकता कभी कभी अपनी झलक दिखला जाती थी दिल को छू लेने वाली धुनों में ढल।

1963 में मेरे कॉलेज के जमाने के प्यारे दोस्त बेमिसाल डायरेक्टर विजय आनंद की एक फिल्म आई थी तेरे घर के सामने, सचिन देव बर्मन के बड़े ही मधुर संगीत से सजी हुई। उस फिल्म का एक गीत 1963 में पायदान नंबर 11 तक पहुंचा था, जो आप अगले वॉल्यूम में सुनेंगे। मगर उसमें दो ऐसे फैबुलस गाने थे जो मेरे सबसे ज्यादा मनपसंद गीतों में शामिल हैं, मगर भाई दोनों ही रह गए थे छाव में, और वहीं से एक गीत निकालकर मैं ले आया हूं आप

0: 1963 की छाव का एक और गीत पेश करता हूँ, उस फिल्म से जो हमारे उस हिट स्टार की पहली फिल्म थी जिस हीरो को अक्सर लोग माइकल जैक्सन ऑफ इंडिया कहते हैं, यानी जितेंद्र। तो जितेंद्र कैसे जुड़े फिल्मी दुनिया से, ये वही आपको बताएंगे।
1: मेरे अंकल की एक ज्वेलरी शॉप है, कई फिल्मों में उनके गहने शूटिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जब अंकल बिजी होते थे तो वो मुझे स्टूडियो भेज देते थे। एक बार मैं गहने लेकर राजकमल स्टूडियो पहुंचा, वहां किसी ने मुझसे कहा, चलो चलो चलो कपड़े बदल लो, तुम्हें एक राजकुमार का रोल करना है।
2: अच्छा,
1: मैं चौंका, मगर कुछ कह पाऊं इससे पहले ही दो आदमियों ने मुझे पकड़कर मेकअप रूम में ले गए और कुछ ही देर में मुझे राजकुमार बनाकर सेट पर पहुंचा दिया। बस फिर कुछ ना पूछिए, कुछ घबराहट, कुछ खुशी, कुछ डर, कुछ झिझक, बहरहाल सेट पर तो मैं पहुंच गया, मगर वहां पहुंचकर देखा तो पता चला कि मेरे ही जैसे कपड़े और मेकअप में कोई 200 राजकुमार मौजूद थे। उस फिल्म में मुझे सिर्फ एक्स्ट्रा बनाया गया, मगर उसका एक फायदा जरूर हुआ।
2: वो क्या?
1: शांताराम जी की नजर मुझ पर पड़ी और उन्होंने मुझे काम दिया। फिल्म सेहरा में मुझे 100 रुपए महीने पर नौकरी मिली और मैंने अपनी पढ़ाई वढ़ाई छोड़कर एक्टिंग शुरू कर दी।
0: मगर ये इतना छोटा सा रोल था साहब, और जितेंद्र ऐसे कॉस्ट्यूम में लिपटे हुए थे कि जितेंद्र के भाई प्रसन्न और उनके परिवार के और लोग भी फिल्म सेहरा देखते हुए पहचान ही नहीं पाए कि जीतू कब आए और कहां गए और कब गए। मगर बहनों भाइयों, उस फिल्म का एक गीत तो मैं जरूर पेश करूंगा आपके लिए, बहुत कम सुने जाने वाले मगर बड़ा काबिल संगीतकार रामलाल को सलाम करते हुए। रामलाल जो बड़े मशहूर शहनाई नवाज भी थे।

क्या शायराना जोड़ी थी साहब, राजेंद्र कुमार और साधना की। बहरहाल अब सन 63 की पायदान नंबर 23 पर चलिए आगरा, मतलब ये कि फिल्मी आगरे के ताजमहल में चलिए, जहां आपके लिए देखिए फूल बिछे हुए हैं।

अब इस महकते मोड़ पर बहनों और भाइयों, जरा ये तो बताइए कि क्या आपने गीत माला की छाओ में के इन पांच सीडीज के पैक के साथ रखी हुई बुकलेट देखी, जिसमें हमारे कॉन्टेस्ट में कामयाब होने वालों की तस्वीरें छपी हैं? वो कॉन्टेस्ट भाई थोड़ा सा मुश्किल जरूर था, मगर मुझे उम्मीद है कि हमारा जो अगला कॉन्टेस्ट होगा वो इतना आसान होगा कि हजारों लाखों लोग बड़े आराम से उसमें हिस्सा ले पाएंगे। उस कॉन्टेस्ट के एंट्री फॉर्म्स गीतमाला की छाओ में के अगले पैक में रखे हुए मिलेंगे आपको, वॉल्यूम्स 21, 22, 23, 24 और 25 के साथ। उनके जरिए आप और गहरे उतर पाएंगे गीतमाला की यादों की उन वादियों में, जिनमें आपको देखिए 1963 की हिट पायदान नंबर 22 बुला रही है।

0: ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें।
1: फिल्म आज और कल का गीत था ये, जो सन 63 में नंबर 22 तक ही पहुंच पाया और उस मधुर साल की पायदान नंबर 21 ने दिल एक मंदिर के गीत का सहारा लेकर बड़ी हसीन कोशिश की थी कि वो सुहाना समय वहीं के वहीं रुक जाए।

0: खुशबू कहाँ से उड़ी, लगता है कोई कली है खिली।
1: जिसमें डिडी डी डिडी है मिली। बैनर भाइयों याद आया आपको, ये बरसों पुराना जिंगल था गीतमाला की एक पुरानी टूथपेस्ट का, जिसमें मेल आवाज थी मशहूर सिंगर भूपेंद्र सिंह की। लड़की कौन थी ये मुझे याद नहीं है। बहरहाल वो उस टूथपेस्ट की जो महक थी वो हमारी गीतमाला की सांसों में भी हुआ करती थी, मगर फिर उस टूथपेस्ट का नाम बदला और पहले नाम से गीतमाला का फिर कोई भी नाता नहीं रहा। लेकिन भाई 1952 से मेरा जो रिश्ता गीतमाला से जुड़ा ना, वो तो हमेशा हमेशा जुड़ा ही रहेगा। और उसी रिश्ते की याद में आज भी दिन रात बेचैन रहकर मैं गीतमाला की छाओं में पेश कर चुका हूँ, और आज 1964 की यादें समेटकर पेश कर रहा हूँ उस साल के यादगार गीतों का दूसरा हिस्सा।

इस खूबसूरत फिल्म मेरे महबूब का संगीत 2 वर्षों में बढ़ गया था साहब, तभी इसके कई गीत छांव में रह गए थे। बस एक गीत सालाना संगीत सीढ़ी तक दोबारा पहुंचा। सन 63 में वो नंबर 24 पर था और 64 में आप उसकी झलक काफी ऊपर की पायदान पर सुनने वाले हैं। बहरहाल आज मैं अपनी यादों में करवटें बदल बदल कर आपको सुनाऊंगा गीतमाला के पहले रेडियो स्टेशन रेडियो सिलोन से जुड़ी हुई एक बड़ी ही अजीब सी कहानी। आप तो जानते ही हैं बहनों भाइयों कि मेरा नाता रेडियो सिलोन से जुड़ा सन 1951 में, फिर सन 52 में गीतमाला शुरू हुई और धूम मचाने लगी और फिर और कई अलग अलग टाइप के प्रोग्राम रेडियो सिलोन के लिए मैं करता रहा। 1956 में मैंने कोलंबो में रेडियो सिलोन के स्टेशन पर भी काम किया महीने भर के लिए और यही सब करते करते बनते बनते मैंने रेडियो सिलोन को ही अपनी पहली प्रेमिका पहली महबूबा बना लिया और मन ही मन में उसके लिए ऐसे मजेदार गाने भी गाने लगा।

104.8. बहनों और भाइयों, आइए फिर एक बार गीत वाला की छाव में अच्छा भाई 1964 की छाव के दो गीतों में आपने नौशाद साहब की मधुर धुन भी सुन ली और दादा सचिन देव बर्मन की मजेदार तर्ज भी सुन ली। अब सुनिए बहनों और भाइयों हाल रेडियो सिलोन की उस बड़ी अजीब सी घटना का जो शुरू हुई थी 1964 के आखिर में और रंग लाई अगले साल जनवरी में। हुआ यूं बहनों और भाइयों कि सन 64 में रेडियो सिलोन की ऑल इंडिया हिंदी सर्विस का कारोबार सिर्फ दो शानदार अनाउंसर्स चलाया करते थे, गोपाल शर्मा और शिव कुमार सरोज। मगर साल के आखिर में शिव कुमार सरोज बीमार पड़ गए और इलाज के लिए बंबई लौट आए और सारी सर्विस का बोझ कई हफ्तों तक अकेले संभालते संभालते हमारे गोपाल शर्मा भी इतने थक गए कि एक सुबह उन्होंने फट से ब्रॉडकास्ट बंद कर दिया और कोलंबो छोड़कर बंबई लौट आए। तो फौरन रेडियो सिलोन के डायरेक्टर जनरल ने हमारे बंबई के दफ्तर में फोन किया कि यहां सब गड़बड़ है, हिंदी सर्विस खतरे में है। कुछ साल पहले अमीन सायानी यहां आए थे, वो हिंदी सर्विस का सारा काम जानते हैं, उन्हें फौरन कोलंबो भेजिए। बस तो साहब मुझे ऑर्डर मिला कि अभी इमीडिएटली सामान बांधो, शाम तक तुम्हारा वीजा और एयर टिकट आ जाएगा और कल सुबह के प्लेन से तुम फौरन पहुंचो कोलंबो, गो। तो भाई मैं तो खुशी खुशी लपटा और झपटा कि वाह वाह, मिल गया मुझे दूसरा मौका रेडियो सिलोन जाने का। तो बस अगले दिन पहुंच गया मैं प्लेन में बैठकर कोलंबो और एयरपोर्ट से सीधे अपना सूटकेस थामे टैक्सी पकड़कर दौड़ा रेडियो सिलोन के स्टेशन पर। मगर वहां पहुंचकर मैं दंग रह गया बहनों भाइयों, क्योंकि वहां तो भाई सब कुछ बिल्कुल बदला बदला सा था।

0: की।
1: सॉरी बानो भाइयों, मेरी बड़ी पुरानी आदत है ना बातों से गीतों को जोड़ते जाने की। खैर, इकबाल कुरैशी की धुन से सजे हुए छांव में गूंजते हुए इस लाजवाब गीत के बारे में एक खास बात मैं आपको यहां बताता चलूं। इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी, डायरेक्टर भी और हीरो भी वो महान इंसान थे जो पिछले कई वर्षों से फिल्मी दुनिया में होने वाले आपस के झगड़े निपटाते और उलझने सुलझाते चले आए हैं। इस महान हस्ती का नाम है श्री चंद्रशेखर, जिनसे मैं आपको गीतमाला की छांव के किसी अगले वॉल्यूम में जल्द ही मिलवाऊंगा। अच्छा भाई, आज 1964 की वार्षिक संगीत सीढ़ी की ऊपर वाली पायदानों पर भी तो हमें कदम रखना है। देखिए पायदान नंबर 17 पर उस साल कैसे लटके झटके हो रहे थे।
2: न झटको जुल्फ से।

ना ना रोना बंद, क्योंकि मेरे रेडियो सिलोन के दूसरे सफर की दास्तान अब शुरू हो रही है, सुनिए। हाँ तो भाई, जब मैं कोलंबो एयरपोर्ट से सीधे रेडियो सिलोन पहुंचा ना, तो मैंने डायरेक्टर जनरल साहब से मिलकर कहा, सर मैं आ गया हूँ, अब कहिए कब मुझे माइक्रोफोन पर काम शुरू करना है। मगर डीजी साहब बड़े सीरियस होकर बोले, नो नो नो, प्रधानमंत्री साहबा का ऑर्डर है कि जो रेडियो सिलोन पर नौकरी नहीं कर रहा हो उसको डायरेक्ट लाइव ब्रॉडकास्ट की परमिशन बिल्कुल मत दीजिए। तो मैं हड़बड़ाकर बोला, मगर सर आप ही ने तो मुझे अर्जेंटली बुलाया था बंबई से, तो अब मैं क्या करूं, वापस बॉम्बे लौट जाऊं? तो वो बोले, नहीं नहीं, बस तुम माइक्रोफोन पर खुद नहीं बोलना, बल्कि हमने जो दो तीन नए टेम्पररी अनाउंसर्स को इस काम के लिए चुना है, कोरे लोग हैं, बिल्कुल नए लोग हैं, उनके पास तुम बैठना। जब एक गीत बज रहा हो तो उसके बाद वाली अनाउंसमेंट तुम टेम्पररी अनाउंसर को लिखाओ, रिहर्स करवाओ और गीत खत्म होने पर उसी से बुलवाओ। तो मैं बोला, मगर सर मुझे अपने वीकली हिट परेड प्रोग्राम गीतमाला की रिकॉर्डिंग बॉम्बे में करके लाने का तो टाइम ही नहीं दिया था आपने, उसमें तो मुझे ही बोलना पड़ेगा भाई। तो वो बोले, ओके ओके, तो तुम उसे गीतमाला को ब्रॉडकास्ट से दो रोज पहले किसी खाली स्टूडियो में रिकॉर्ड करवाओ और उसमें गाने भी मिक्स करवाओ और बुधवार की रात उसी टेप को ब्रॉडकास्ट करवाओ। तो साहब यही मुझे वहां करना पड़ा, उसी तरह जैसे आज भी मैं अपने स्टूडियो में अपने रिकॉर्डिस्ट के वर्गीज जॉन की मदद से गीतमाला की छाव में का वॉल्यूम नंबर 22 रिकॉर्ड करवा रहा हूं और अब हाथ के इशारे से उन्हें समझा रहा हूं कि बेटा लगाओ 1964 के गीत नंबर 14 की झलक।

0: इस जॉन की मदद से गीतमाला की छाओ में का वॉल्यूम नंबर 22 रिकॉर्ड करवा रहा हूँ और अब हाथ के इशारे से उन्हें समझा रहा हूँ कि बेटा लगाओ 1964 के गीत नंबर 14 की झलक।
1: तेरे हुस्न की क्या तारीफ।
0: फिल्म लीडर का था ये गीत और उस साल जो गीत झूम झूम कर सालाना पायदान नंबर 13 पर बजा वो था फिल्म कोहरा का।

0: राधाकृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधाकृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैं भरि।
1: बहनों और भाइयों, आइए फिर एक बार गीत माला की छाव में नंबर 12 पर गूंजा था गीत उस फिल्म का जिसका यादगार प्रीव्यू मैंने देखा था आरके स्टूडियोज में, और वो यादगार इसलिए था कि मुझे वहां उस फिल्म की रेडियो पब्लिसिटी के लिए बुलाया गया था और मैंने वो शो देखा फिल्म के दो जबरदस्त सितारों राज कपूर और राज

ओहो साहब, संगम के बिछड़े हुए सितारों के गम ने मुझे फिर पहुंचा दिया उसी जमाने में हुए मेरे रेडियो सिलोन के सफर के माहौल में, जब मैं माइक्रोफोन के पास बैठ तो सकता था मगर मुझे माइक्रोफोन पर बोलने की इजाजत नहीं थी। मेरे दोस्त विजय किशोर दुबे तो तब तक रेडियो सिलोन की नौकरी छोड़ ही चुके थे, लेकिन मेरे एक और जबरदस्त दोस्त और बड़े पॉपुलर अनाउंसर ग्रेग, जो रेडियो सिलोन की इंग्लिश कमर्शियल सर्विस पर गीतमाला का इंग्लिश वर्जन यानी हिट परेड पेश किया करते थे, वो वहां थे। तो उन्होंने मुझे एक दिन अकेले में बताया कि संभल के रहना, यहाँ आजकल पॉलिटिक्स की बड़ी गड़बड़ें चल रही हैं और रेडियो सिलोन पर एक छोटी सी गड़बड़ हो भी गई थी जिसकी वजह से रेडियो सिलोन में बंदिशों की लपेट में आ गया है। हुआ ये था कि प्राइम मिनिस्टर साहबा ने देश के लिए एक संदेश रिकॉर्ड करवाया था जिसके पहले और बाद में थोड़े से संजीदा सोबर म्यूजिक बजाने का ऑर्डर था, मगर गलती से जरा सा गमगीन जरा सा सैड सा म्यूजिक बज गया। भाई वैसे तो इससे कोई फर्क ना पड़ता मगर ऑपोजिशन पार्टी के एक बड़े अखबार ने शरारत कर दी। अगले दिन अखबार में बड़ी बड़ी हेडलाइंस छपी कि देखा रेडियो सिलोन ने भी कैसे मैडम प्राइम मिनिस्टर की तकरीर से पहले और बाद में फ्यूनरल मार्च बजा दिया, यानी मातम का शोक संगीत बजा दिया। और साहब धूम मच गई, कमर्शियल सर्विस के डायरेक्टर साहब को नौकरी से निकाल दिया गया और सारे रेडियो स्टेशन पर भी बड़ी तकलीफें टूट पड़ी साहब।

1048.

0: मंगलम अब सबैको मंगलम अब घर घरमा मंगलम सबैको इच्छा पूरा गर्ने चामल मंगलम
1: जय श्री फूड्स प्राली द्वारा उत्पादित मंगलम जीरा मसिनो चामल मंगलम सोनम चामल मंगलम सोना स्टीम चामल स्वाद र संतुष्टि को लागि।

104.8.

0: गोल्ड पैलेस सुप्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: मलाई ट्रैक शूट चाहियो,
2: मलाई फ्रॉक,
3: मलाई पनि सूट,
4: अनि मलाई

0: ರಸಾವೇಲ್ ಸುಚ್ಚೆ ಪಾಠ
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सकूने।

0: Four point eight megahertz.
1: FM 104.8 megahertz.
2: FM 104.8 megahertz.

0: 1048.
1: FM 104.8 MHz मा यहाँ रोएले मनोरञ्जन लिँदै हुनुहुन्छ।

Best of non-stop Hindi remix, only on FM AJ 104.8 MHz.

Chakamaka,

0: भोलि त्यहाँ त्यो फिल्म हेर्दाखेरि भोलि बनाऊ न।
1: मिति गङ्गुदी मङ्सी।

0: गोल्ड पैलेस सुप्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 मा संपर्क करना सक्नुहुनेछ।
2: आजकल शुद्धता पाउन कति गाह्रो भइसक्यो।
3: जहाँ हेर्यो त्यहाँ मिसावट छ,
2: त्यसैले शुद्धता नै खोजौ। जेजे ज्वेलर्स प्रस्तुत छ जेजे ज्वेलर्स। जेजे ज्वेलर्समा छ सुन, चाँदी तथा हिराका आकर्षक डिजाइनहरूको उत्कृष्ट कलेक्सन। सुन, चाँदी तथा हिरा जे किन्नुहोस् जेजे ज्वेलर्सकै किन्नुहोस्।
4: जेजे ज्वेलर्स बसन्तपुर न्यू रोड दमकल नजिक स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैङ्क मुनि। सम्पर्क नम्बर 5320411 98020076888।
2: जे जे ज्वेलर्स शुद्धताको पहिचान।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: FM AJ 104.8 MHz.

248. One oh 4 8.

0: का जाना पहचाना संगीत गूंजा और देखिए जाग उठी मधुर मशहूर फिल्म संगीत के बचपन और जवानी की ये यादें। गीतमाला की छाओं में के सिलसिले में मैंने रेडियो सिटी पर बहुत सारे बल्कि कुल 7 प्रोग्राम पेश किए थे। एक प्रोग्राम में रेडियो सिटी के पॉपुलर प्रेजेंटर गौरव ने मुझे मदन मोहन के बारे में पूछा था।
1: लेकिन अमीर अंकल, एक बात जो मैं जानना चाहूंगा, मदन मोहन साहब से जुड़ी हुई कि वो खुद भी तो सिपाही थे,
0: तो इस पर मैंने गौरव को बताया था रेडियो सिटी पर कि किस तरह मदन मोहन कुछ वर्षों के लिए आर्मी में भी भर्ती हो गए थे। लेकिन दोस्तों, मदन जी के सिपाही बने की एक बात लता जी ने भी मुझे बताई थी, जो आपको या तो मेरे सिंडिकेटेड रेडियो प्रोग्राम संगीत के सितारों की महफिल के एक एपिसोड में सुनने को मिलेगी या आज यहाँ गीत वाला की छाव में सुनिए।
2: मदन भैया 1-2 साल मिलिट्री में थे और शायद इसी वजह से उनके बर्ताव में एक ऊपरी सख्ती हुआ करती थी। कई बार बड़े रफ से लगते थे, बातें खरी खरी मुंह पर सुना देते थे। प्यार में उनका यूं होता था कि बस हाथ उठाया और धम से मार दिया। मगर ये सख्ती सिर्फ ऊपर की थी, अंदर से तो वो बड़े भावुक थे।

I'm

I'm going to go to the hospital.

Peru.

1963 में मेरे कॉलेज के जमाने के प्यारे दोस्त बेमिसाल डायरेक्टर विजय आनंद की एक फिल्म आई थी तेरे घर के सामने, सचिन देव बर्मन के बड़े ही मधुर संगीत से सजी हुई। उस फिल्म का एक गीत 1963 में पायदान नंबर 11 तक पहुंचा था, जो आप अगले वॉल्यूम में सुनेंगे। मगर उसमें दो ऐसे फैबुलस गाने थे जो मेरे सबसे ज्यादा मनपसंद गीतों में शामिल हैं, मगर भाई दोनों ही रह गए थे छाव में, और वहीं से एक गीत निकालकर मैं ले आया हूं

0: अब 1963 की छाव का एक और गीत पेश करता हूँ, उस फिल्म से जो हमारे उस हिट स्टार की पहली फिल्म थी, जिस हीरो को अक्सर लोग माइकल जैक्सन ऑफ इंडिया कहते हैं, यानी जितेंद्र। तो जितेंद्र कैसे जुड़े फिल्मी दुनिया से, ये वही आपको बताएंगे।
1: मेरे अंकल की एक ज्वेलरी शॉप है, कई फिल्मों में उनके गहने शूटिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जब अंकल बिजी होते थे तो वो मुझे स्टूडियो भेज देते थे। एक बार मैं गहने लेकर राजकमल स्टूडियो पहुंचा, वहां किसी ने मुझसे कहा, चलो चलो चलो कपड़े बदल लो, तुम्हें एक राजकुमार का रोल करना है।
2: अच्छा,
1: मैं चौंक रहा, मगर कुछ कह पाऊं इससे पहले ही दो आदमियों ने मुझे पकड़कर मेकअप रूम में ले गए और कुछ ही देर में मुझे राजकुमार बनाकर सेट पर पहुंचा दिया। बस फिर कुछ ना पूछिए, कुछ घबराहट, कुछ खुशी, कुछ डर, कुछ झिझक। बहरहाल सेट पर तो मैं पहुंच गया, मगर वहां पहुंचकर देखा तो पता चला कि मेरे जैसे कपड़े और मेकअप में कोई 200 राजकुमार मौजूद थे। उस फिल्म में मुझे सिर्फ एक्स्ट्रा बनाया गया, मगर उसका एक फायदा जरूर हुआ।
2: वो क्या?
1: शांताराम जी की नजर मुझ पर पड़ी और उन्होंने मुझे काम दिया। फिल्म सेहरा में मुझे 100 रुपए महीने पर नौकरी मिली और मैंने अपनी पढ़ाई वढ़ाई छोड़कर एक्टिंग शुरू कर दी।
0: मगर ये छोटा सा रोल था साहब, और जितेंद्र ऐसे कॉस्ट्यूम में लिपटे हुए थे कि जितेंद्र के भाई प्रसन्न और उनके परिवार के और लोग भी फिल्म सेहरा देखते हुए पहचान ही नहीं पाए कि जीतू कब आए और कहां गए और कब गए। मगर मैं उनकी उस फिल्म का एक गीत तो मैं जरूर पेश करूंगा आपके लिए, बहुत कम सुने जाने वाले मगर बड़ा काबिल संगीतकार रामलाल को सलाम करते हुए, रामलाल जो बड़े मशहूर

सहयात्री, हमरा विशेषता हरु निक्षेप में आकर्षक ब्याज दर, सरल र सहज तरीका ले कर्जा प्रवाह, देशभरि रहेका शाखाहरुबाट निःशुल्क एमबीबीएस का

0: 1921 के बाद लीजे फिर आ गई 1963 की सालाना संगीत श्रेणी की 5 पादाने, जिनके बाद आज का ये वॉल्यूम नंबर 19 हो जाएगा खत्म। पायदान नंबर 25 पर दिल ही तो है।
1: तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहो।

इस महक मोर पर बहनों भाइयों जरा ये तो बताइए कि क्या आपने गीत माला की छाव में के इन पांच सीडीज के पैक के साथ रखी हुई बुकलेट देखिए जिसमें हमारे कॉन्टेस्ट में कामयाब होने वालों की तस्वीरें छपी हैं। वो कॉन्टेस्ट भाई थोड़ा सा मुश्किल जरूर था मगर मुझे उम्मीद है कि हमारा जो अगला कॉन्टेस्ट होगा वो इतना आसान होगा कि हजारों लाखों लोग बड़े आराम से उसमें हिस्सा ले पाएंगे। उस कॉन्टेस्ट के एंट्री फॉर्म्स गीतमाला की छाव में के अगले पैक में रखे हुए मिलेंगे आपको। वॉल्यूम्स 21, 22, 23, 24 और 25 के साथ उनके जरिए आप और गहरे उतर पाएंगे गीतमाला की यादों की उन वादियों में जिनमें आपको देखिए 1963 हिट पायदान नंबर 22 बुला रही।

0: याद है आपको, ये बरसों पुराना जिंगल था गीतमाला की एक पुरानी टूथपेस्ट का, जिसमें मेल आवाज थी मशहूर सिंगर भूपेंद्र सिंह की। लड़की कौन थी ये मुझे याद नहीं है। बहरहाल वो उस टूथपेस्ट की जो महक थी वो हमारी गीतमाला की सांसों में भी हुआ करती थी, मगर फिर उस टूथपेस्ट का नाम बदला और पहले नाम से गीतमाला का फिर कोई भी नाता नहीं रहा। लेकिन भाई 1952 से मेरा जो रिश्ता गीतमाला से जुड़ा ना, वो तो हमेशा हमेशा जुड़ा ही रहेगा। और उसी रिश्ते की याद में आज भी दिन रात बेचैन रहकर मैं गीतमाला की छाव में पेश कर चुका हूँ। और आज 1964 की यादें समेट कर पेश कर रहा हूँ उस साल की यादगार गीतों का दूसरा हिस्सा।
1: याद में तेरे जागर जागते हम रात भर करवटें बदलते

0: یه پرگبر دید بلگ چاو
1: یادوں کے ساتھ چلتے ہیں یاد میں.

खूबसूरत फिल्म मेरे महबूब का संगीत दो वर्षों में बट गया था साहब, तभी इसके कई गीत छांव में रह गए थे। बस एक गीत सालाना संगीत सीढ़ी तक दोबारा पहुंचा। सन 63 में वो नंबर 24 पर था और 64 में आप उसकी झलक काफी ऊपर की पायदान पर सुनने वाले हैं।

0: मचाने लगी और फिर और कई अलग अलग टाइप के प्रोग्राम रेडियो सिलोन के लिए मैं करता रहा। 1956 में मैंने कोलंबो में रेडियो सिलोन के स्टेशन पर भी काम किया महीने भर के लिए, और यही सब करते करते बनते बनते मैंने रेडियो सिलोन को ही अपनी पहली प्रेमिका, पहली महबूबा बना लिया, और मन ही मन में उसके लिए ऐसे मजेदार गाने भी गाने लगे।
1: मैं तेरे प्यार में क्या क्या ना बना, तेरे प्यार में क्या क्या ना बना, दिल बद जाने ये मौसम, जाने ये मौसम,
2: मैं घटा प्यार भरी दुआ मेरा।

Shabunam

भाइयों, आइए फिर एक बार गीत वाला की छाव में। अच्छा भाई, 1964 की छाव के दो गीतों में आपने नौशाद साहब की मधुर धुन भी सुन ली और दादा सचिन देव बर्मन की मजेदार तर्ज भी सुन ली। अब सुनिए बहनों भाइयों, हाल रेडियो सिलोन की उस बड़ी अजीब सी घटना का जो शुरू हुई थी 1964 के आखिर में और रंग लाई अगले साल जनवरी में। हुआ यूं बहनों भाइयों के सन 64 में रेडियो सिलोन की ऑल इंडिया हिंदी सर्विस का कारोबार सिर्फ दो शानदार अनाउंसर्स चलाया करते थे, गोपाल शर्मा और शिव कुमार सरोज। मगर साल के आखिर में शिव कुमार सरोज बीमार पड़ गए और इलाज के लिए बंबई लौट आए और सारे सर्विस का बोझ कई हफ्तों तक अकेले संभालते संभालते हमारे गोपाल शर्मा भी इतने थक गए कि एक सुबह उन्होंने फट से ब्रॉडकास्ट बंद कर दिया और कोलंबो छोड़कर बंबई लौट आए। तो फॉरेन रेडियो सिलोन के डायरेक्टर जनरल ने हमारे बंबई के दफ्तर में फोन किया कि यहाँ सब गड़बड़ है, हिंदी सर्विस खतरे में है। कुछ साल पहले अमीन सायानी यहाँ आए थे, वो हिंदी सर्विस का सारा काम जानते हैं, उन्हें फौरन कोलंबो भेजिए। बस तो साहब, मुझे ऑर्डर मिला कि अभी इमीडिएटली सामान बांध हो, शाम तक तुम्हारा वीजा और एयर टिकट आ जाएगा और कल सुबह के प्लेन से तुम फौरन पहुंचो कोलंबो, गो। तो भाई, मैं तो खुशी खुशी लपटा और झपटा कि वाह वाह, मिल गया मुझे दूसरा मौका रेडियो सिलोन जाने का। तो बस अगले दिन पहुंच गया मैं प्लेन में बैठकर कोलंबो और एयरपोर्ट से सीधे अपना सूटकेस थामे टैक्सी पकड़कर दौड़ा रेडियो सिलोन के स्टेशन पर। मगर वहां पहुंचकर मैं दंग रह गया बहनों भाइयों, क्योंकि वहां तो भाई तो सब कुछ बिल्कुल बदला बदला सा था।

सॉरी बहनों भाइयों, मेरी बड़ी पुरानी आदत है ना बातों से गीतों को जोड़ते जाने की। खैर, इकबाल कुरैशी की धुन से सजे हुए छांव में गूंजते हुए इस लाजवाब गीत के बारे में

0: एक खास बात मैं आपको यहां बताता चलूं, इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी, डायरेक्टर भी और हीरो भी वो महान इंसान थे जो पिछले कई वर्षों से फिल्मी दुनिया में होने वाले आपस के झगड़े निपटाते और उलझने सुलझाते चले आए हैं। इस महान हस्ती का नाम है श्री चंद्रशेखर, जिनसे मैं आपको गीतमाला की छाओं के किसी अगले वॉल्यूम में जल्द ही मिलवाऊंगा। अच्छा भाई, आज 1964 की वार्षिक संगीत छड़ी की ऊपर वाली पायदानों पर भी तो हमें कदम रखना है। देखिए, पायदान नंबर 17 पर उस साल कैसे लटके झटके हो रहे थे।
1: न झटके

गया था गीत उस फिल्म का जिसका यादगार प्रीव्यू मैंने देखा था आरके स्टूडियोज में, और वो यादगार इसलिए था कि मुझे वहां उस फिल्म की रेडियो पब्लिसिटी के लिए बुलाया गया था और मैंने वो शो देखा फिल्म के दो जबरदस्त सितारों राज कपूर और राजेंद्र कुमार के बीच बैठकर, दो गजब के लोग जिनका मैं फैन भी था और छोटा मोटा दोस्त भी, मगर अफसोस के अब तो

साहब संगम के बिछड़े हुए सितारों के गम ने मुझे फिर पहुंचा दिया उसी जमाने में हुए मेरे रेडियो सिलोन के सफर के माहौल में, जब मैं माइक्रोफोन के पास बैठ तो सकता था मगर मुझे माइक्रोफोन पर बोलने की इजाजत नहीं थी। मेरी दोस्त विजय किशोर दुबे तो तब तक रेडियो सिलोन की नौकरी छोड़ ही चुके थे, लेकिन मेरे एक और जबरदस्त दोस्त और बड़े पॉपुलर अनाउंसर ग्रिंग, जो रेडियो सिलोन की इंग्लिश कमर्शियल सर्विस पर गीतमाला के इंग्लिश वर्जन यानी हिट परेड पेश किया करते थे, वो वहां थे। तो उन्होंने मुझे एक दिन अकेले में बताया कि संभल के रहना, यहाँ आजकल पॉलिटिक्स की बड़ी गड़बड़ें चल रही हैं और रेडियो सिलोन पर एक छोटी सी गड़बड़ हो भी गई थी जिसकी वजह से रेडियो सिलोन में बंदिशों की लपेट में आ गया है। हुआ ये था कि प्राइम मिनिस्टर साहबा ने देश के लिए एक संदेश रिकॉर्ड करवाया था जिसके पहले और बाद में थोड़े से संजीदा सोबर म्यूजिक बजाने का ऑर्डर था, मगर गलती से जरा सा गमगीन जरा सा सैड सा म्यूजिक बज गया। भाई वैसे तो इससे कोई फर्क ना पड़ता मगर ऑपोजिशन पार्टी के एक बड़े अखबार ने शरारत कर दी। अगले दिन अखबार में बड़ी बड़ी हेडलाइंस छपी कि देखा रेडियो सिलोन ने भी कैसे मैडम प्राइम मिनिस्टर की तकरीर से पहले और बाद में फ्यूनरल मार्च बजा दिया यानी मातम का शोक संगीत बजा दिया और साहब धूम मच गई। कमर्शियल सर्विस के डायरेक्टर साहब को नौकरी से निकाल दिया गया और सारे रेडियो स्टेशन पर भी बड़ी तकलीफें थी।

जाने को मीठो ढूंढे संसार छोड़ने आवाज सुंदर नो से ज्ञान ज्योति।

एक बंदे जंजीर एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंदे जंजीर दुर्बल को न सताइए दुर्बल को न सताइए जाति मोटी हाय बिना जीव

कवि ने इशारा किया है, संसार रूपी चक्की की ओर। इस चक्की के भी दो पार्ट हैं, धरती और आकाश। दिन रात ये चक्की चलती रहती है।

ताप से बचान थोए दो पाटन के बीच में साबत बचान थोए हाड़ जले जू लाकड़ी हाड़ जले जू लाकड़ी देश जले जू खास सब जग जलता।

कबीर ने इशारा किया है। सड़क के किनारे जो गंदे पानी की नालियां होती हैं, उसके लिए कहा है।

जाए मिले जब गंध से, जाए मिले जब गंग से, तो गंगो तक जाए मिले।

सब खड़े हैं तुलसी तुलसी सब खड़े हैं तुलसी बन की घास।

जाके हृदय सा

0: राही मन बड़न को देख दन राही मन बड़न को देख दन लघु नदी जे डार
1: रही कहते हैं किसी बड़े आदमी से मित्रता हो जाए तो अपने छोटे मित्र का तिरस्कार न कीजिए, उसको भूलिए नहीं।
0: रही मन बड़न को देख कर लघु नदी डार जहाँ काम आए सुई क्या करे तलवार।

रह मन धागा प्रेम का, ना तोड़ो खिंचाए। रहीम के अनुसार प्रेम एक कच्चे धागे के जैसा होता है, बड़ा संभालना पड़ता है। देखिए क्या सुंदरता से वर्णन किया है।

रहीम के बारे में बड़ा सुंदर प्रसंग है। सभी जानते हैं रहीम कृष्ण भक्त थे। उनके स्वभाव के बारे में एक बात बहुत कम लोग जानते हैं कि रहीम स्वभाव से बड़े महान दानी थे। बहुत से दानी हुए हैं, रहीम जैसा दानी नहीं हुआ, क्योंकि विशेषता थी। रोज सुबह घर के बाहर बैठ जाते थे दान करने के लिए, भावना के साथ मुट्ठी भर भर के दान करते थे। कोई भी उनके दरवाजे से खाली हाथ नहीं जा सकता। लेकिन एक विशेषता थी, दान करने के लिए जैसे जैसे वो अपने हाथ उठाते थे तो अपनी आंखें नीचे झुका लेते थे। लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था, ये रहीम कैसा दान करते हैं, दान भी करते हैं और इन्हें शर्म भी आती है दान करने, निगाहें झुका लेते हैं। इस बात की चर्चा हुई तो स्वामी तुलसीदास जी तक बात पहुंची। उन्होंने सुना, मन ही मन मुस्कुराए और दो पंक्तियां लिखकर रहीम के पास भेजी।

Giorgio Barcucciotta, no, Giorgio Nietzsche, me.

जो जो कर हो जा करो क्यों क्यों नीचे। तो निवेदन किया है बेनहार कोई और है।

temo madura, saquemos madura, versión madura, saquemos.

0: ਜਿਸ ਸਮਿਤ ਫਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕੰਚਨ ਜੰਗਾ
1: ਹਰ ਕੋਈ ਰੋਠਾ ਹੈ ਕੁਛ ਸੱਚਾ।

Jojo, mare cu ceața bună. Ne vedem chiar. Bine, har, mori, har, har.

पड़ करे सांसों नीचे ने तुलसी इस संसार में तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए भाई ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए ना जाने

सज्जनों, अब कुछ समय के पश्चात मछली इतनी बड़ी हो गई कि उसका कमंडल में समाना कठिन हो गया। जब राजा ने देखा तो उसको कमंडल से निकालकर एक बड़े से मटके में डाल दिया। परंतु कुछ ही दिनों के बाद मछली मटके से भी बड़ी हो गई और उसे वह मटका भी छोटा पड़ने लगा। अब राजा सोचने लगे कि क्या करूं, इसे कहां रखूं। आखिर हार कर राजा सत्यव्रत मछली को लेकर समुद्र के तट पर आए और मछली को समुद्र में छोड़ना चाहा। तभी राजा ने देखा

सत्यव्रत मछली को समुद्र में छोड़ने को तैयार हुए तो मछली ने मत्स्य रूप धारण कर लिया और बोली, हे राजन, मुझे यहां मत छोड़ो, क्योंकि समुद्र में बड़े बड़े मगर रहते हैं, वो मुझे खा जाएंगे। राजा को इतनी मधुर वाणी सुनकर समझने में देर ना लगी और वो मन ही मन बड़े प्रसन्न हो गए, अपने आप को धन्य समझने लगे और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, तेरी लीला बड़ी अपरंपार है, जिसको कोई नहीं जान सकता। आप कौन से रूप में दर्शन दे दो, किस क्षण कहां आ जाओ, कुछ नहीं कहा जा सकता।

भक्तजनों, भगवान भक्त से बोले कि हे प्यारे भक्त, मैं तुमको बड़ी ही महत्वपूर्ण बात बताता हूँ, उसको ध्यान लगाकर सुनो। आज से ठीक सातवें दिन भयानक प्रलय होगी, जिसमें तीनों लोक जल से सराबोर हो जाएंगे। उस समय मेरी प्रेरणा से तुम्हारे पास एक नौका आएगी, जिसमें तुम पौधों, जीवों, अन्न तथा बीजों और सप्त ऋषियों के साथ बैठकर अपने प्राणों की रक्षा करना और इस प्रलय काल से बचना। यह सुनकर राजा सत्यव्रत ने सच्चे हृदय से भगवान का धन्यवाद किया।

हे भक्तों, प्रभु ने बताया कि जब नाव चलने लगेगी, पृथ्वी जल से डूबने लगेगी, एक भयानक आंधी आएगी, नैया डगमगा जाएगी, तब मैं मत्स्य रूप में ही रक्षा करने आऊंगा। आखिर वह समय आ ही गया, तूफान आया, नौका डगमगाई, पृथ्वी पानी में डूबने लगी। तब भगवान मत्स्य रक्षा करने के लिए आए और भक्तों की रक्षा की। सबने मत्स्य भगवान का गुणगान किया और हृदय से धन्यवाद दिया। इसके बाद भगवान ने नौका विहार करते हुए सत्यव्रत को

प्रिय भक्तजनों, उसी समय हैग्रीव नाम का एक राक्षस था जिसने ब्रह्मा जी के वेदों को चुरा लिया और पाताल में जाकर छुपा दिया। भगवान मत्स्य ने उस राक्षस का वध करके वेदों को खोज निकाला और इस तरह हमारे वेदों का उद्धार किया। यही भगवान श्री विष्णु जी का प्रथम अवतार हुआ, जिन्हें सारे संसार ने माना और पूजा की। हम भी भगवान मत्स्य को श्रद्धा पूर्वक सर झुकाकर नमस्कार करते हैं।

0: मनशान्ति आराधना र उपहारका लागि समेत प्रयोग गर्न सकिने कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती नेपालको पहिलो ISO सर्टिफाइड अगरबत्ती कम्पनी।
1: कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती पवित्र सुवास।
2: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सकूने।
3: तपाईं अहिले सुनिरहनु भएको छ FM अध्यात्म ज्योति।

0: बिहान को 5 बजिसके अब एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्ज को नियमित प्रसारण आरंभ हो। प्रसारण प्रारंभ में आज को पंचांग
1: आज श्री सालिभानीय साखे 1948 सृष्टितो गताब्दा 1955-88 5127 कलेर गताब्दा 5127 60 संवत्सर मध्ये 54 संवत्सर रौद्र नामक संवत्सर नेपाल देशीय संवत 1146 विक्रम संवत 2083 साल भाद्र महिनाको 7 गते आदित्यवार तदनुसार अगस्त महिनाको 23 तारिक सन 2026 श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि मूल नक्षत्र विष्कम्भ आनन्दादि योग भव कर्ण सिद्धि योगा आज चन्द्रमा धनु राशिमा अवस्थित श्री सूर्य दक्षिणायण यो महिना श्री सूर्य सिंह राशिमा अवस्थित ताजा काठमाडौँमा अहिले 5:39 सूर्योदय हुनेछ। आदरणीय श्रोता आज पुत्रदा एकादशी व्रत हो। शुभ प्रभात एवं नमस्कार। यो प्रभात कालिनीय कार्यक्रम आराधनामा म प्रस्तोता युवेन्द्र अब आजको यो कार्यक्रम आराधनालाई सदा झैं अगाडि बढाउँदै छु हस्त दर्शन एवं भूमि वन्दनाबाट।